राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी तो निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ये पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे, नानक राहो पछाणे से। इस दा उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगदे हन। गंधार अते धैवत वर्जित हन। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग

तिब्बत दे लोग रोहेले खंड विच वसन वाले लोग गोरखा लैंड विच वसन वाले लोग चीन विच वसन वाले लोग मचीन विच वसन वाले लोग सर्व धरती दे उपर रहन वाली मनुखता जड़ी है ना ओ रब नू त्या रही है जप रही है। बंग के बंगाली फिरंग के फरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है ए देश तेरी आज्ञा अंदर चल रहे ने तेरे अगे सिजदा कर रहे ने तेरे अगे डंडौत कर रहे ने तेरे अगे वंदना पे करदे ने नमस्कार करदे ने दिन चढ़दा तां तेरी पूजा विच जुड़े हुंदे ने शाम पैंदी तां तेरी पूजा विच जुड़े हुंदे फिर रोहेला खंड रोह के रोहेले माघ देश के मघेले वीर वड्डे वड्डे अपने आप नूं बलि पुरश कहाउण वाले रोहेला खंड तिब्बत दे इलाके तों उरां है जिहड़ियां हेमकुंड साहिब जी दा अस्थान है इलाका है इस दे नाल दा रोहेला खंड है इह गुरु नानक देव जी महाराज इस रोहेले खंड विच पहुंचे सन सतनाम दा उपदेश महाराज ने दिता सी रोहेले खंड वाले तैनू जपण वाले हन ते माघ देश ए सारे दे सारे इलाके गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे उस समय दे नाम नाल जाने जांदे सन बड़े बड़े वीर जेड़े हन बहादुर जेड़े ने महाराज सच्चे पातशाह लिखदे ने वंगसी बुंदेले पाप पुंज को मलत है महाराज हे अकाल पुरख बंदगी करके नाम जप के पापा नू दड़मल दिंदे ने खत्म कर दिंदे ने पापा दी पुंज जड़ी निकली हुंदी ना जड़ी चोटी बन जांदी है नाम जपण दे नाल बड़े बड़े वीर बरी बहादुर जड़े ने तेरे नाम नूं जप के पापा नूं दल मल दिंदे ने फिर गोखा गुण गावै गोरखा गोरखा लैंड विच रहण वाले इंसान गोखा गुण गावै चीन मचीन के सीस नियावै चीन मचीन दे लोग सीस नवाउंदे ने तिब्बती त्यावै तिब्बत दे इलाके च रहण वाले लोग भी तेरे नाम नूं जपदे ने पर जिन्ने तेरे नाम नू जपया जिन जिन तेरे नाम नू त्याया भावे पूर्वी ना पार पावै हिंगला हिमालय त्यावै गोर गर्दे जी गुण गावै तेरे नाम है जोगी जोग सत सब सचे पातशाह महाराज ने जिन्ने शब्द ने इन्हां विच सर्व मनुखता दा नाम लिख के कले कले इलाके दा नाम लिख के कली कली जाति वर्ण दा नाम लिख के महाराज ने इको गल कह दिती ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਤਕਵਾਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਈ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ अपनी भाषा विच ओ नाम जप रहे ने काले लोग अपनी भाषा विच नाम जपदे ने गोरे लोग अपने अकीदे मुताबक नाम जपदे ने मदरे चीने लोग अपने अकीदे मुताबक नाम जपदे ने जो अकीदत कीता गया है उस मुताबक नाम जपदे ने ते जेड़ा नाम तैनू मिलिया ना वाहिगुरु उस नाम नूं तू जप ए ना वेख भी चौ वर्णा दे लोग कोई महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहा है कोई महात्मा देव की पूजा कर रहा है कोई शंकर दी पूजा कर रहा है शंकर वर्ण होया पै कोई चंद्रमा दी पूजा कर रहा है कोई सूरज दी पूजा कर रहा है कोई धरती आकाश पौन पानी सब दी पूजा विच लगा होया ते उन्हां दे अकीदे मुताबक ही नाम जप रहे ने पर तेरा अकीदा है केवल वाहिगुरु एक अकाल दी पूजा तू एक अकाल दी पूजा च जुड़ जा एक अकाल पुरख दे दर्शन कर रब दे नाल बात कर रब दी मिठ बोलड़ी भाषा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा ना जदों तेरा स्वरूप मिठ बोलड़ा हो जाएगा तेरे स्वरूप दे बाहर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु झलकेगा तेरे शरीर दे विच वाहिगुरु वस गया बाहर तेरे शरीर दे विचों वाहिगुरु वाहिगुरु दियां झलकां पैणगियां इस करके उस

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

अपराधी दूणा ने वे जो हुता मेरे का सिस्टिवाय क्या थी जारी देख सुधे जाए मुला।

कर्म है अपर्म है। वाहेगुरु अलोक है अशोक है, अकर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है, अबा है अगा है, अमान है निदान है, अनेक है।

सरस्वती बोले गोया होवे बयान करे ते सामान पहले देख लिया है। गुरु जी कहते ने फिर की नतीजा निकल सकेगा। सरस्वती बक्ता करके जुगपोट गणेश के हाथ लिखे हों काल कृपान बिना बिनती हे अकाल पुरख अंतर्यामी कृपान सूचक है कि तेरी भी शक्ति लय करन दी भी है। तो एक संसारी एक पंडारी एक लय दीवान लय मीन्स लय लैण दी बाण है आदत है यानी मृत्यु करन दी भी तेरे विच ही शक्ति है और कोई मार नहीं सकता। तो काल कृपान बिना बिनती बिनती तो मुरादे इज्ज़त इनकसारी निम्रता बिना तेरे अगे सजदा कीते हो सिर झुकायो कोई गल बन नहीं सकेगी। काल कृपान बिना बिनती ना तो तुमको पवन नै किरी जायो तिल मात्र भी तेरे गुण नहीं बयान कर सकन गए। तो अंत फिर यही कहना पवेगा कि

के निर्जुन नरूप हो, के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गावे तेरा नाम है। पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गावे तेरा नाम है। जी दुख दुख सद पौन सद लगते।

इस राग दे आरोह विच धैवत वर्जित है। इस राग दी जाति शाड़व संपूर्ण समा रात दा पहला पैर वादी ऋषभ अते संवादी पंचम है। इस राग विच साधो मन का मान त्यागो शब्द दा गायन कर रहे हन प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

0: गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सज जावे, मन बैठे सतगुर के पास,
1: मन बैठे

आरणमत वेद हथियार बौखला अगन तपता पांडा भाव अमृत दार घड़िए शब्द सच्ची लगता दिन को नजर कर।

भय प्रसन्न गुरुदेवा तिन प्रभ जब आए मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया कयो प्रभु।

करम जिसको धुरो लिखिया सोई कार कमार। भाव लागा गोविंद स्यों घाल पाई थाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबई जाए। पाया अमोल पदार्थ तो सदगुर सरणी पाए,

इस पर पंच में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर मांग समाना। ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। चौ जुगा का निबेड़ा नर मनुखा नो एक निदाना। जत संजम तीरथ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराणा।

आए। भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई, करके नीच सदावना ता प्रभु अंदर लेके पाई, कल जुग ना

प्रभु दे दरमियान अरदास एक पुल दा काम कर दी। इसे लई अरदास करदिया होया हरेक व्यक्ति अपने आप नूं प्रभु नाल जुड़िया होया महसूस करता है। प्रभु दियां बख्शिशां दा दर उस वेले खुल जांदा है जिस वेले प्रेम नाल अरदास कीती जाए। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी भी सहस्कृति सलोक विच इस ढंग नाल प्रभु दे सन्मुख अरदास करदे ने, हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरणे करुणा मैं सब दुख हरो, हे प्रभु कृपा दे खजाने अते सारे दुखां नूं दूर कर सकन वाले प्रभु जी, मैं आप जी दे चरणा विच अरदास कर रहा, कृपा करो मैं अपने शरीर दे अंत तक सदा नाम जपदा रहां अते तुहाडी मेहर मेरे दुखां नूं सदा दूर करदी रहे।

alles in deine Richtung. सारे पिंड दूर दूर होने लगे, कोई इन चंगा नहीं समझ, सारे नफरत कर दे। प्रा भाई कह लगे, हो भाई मन चंगा भला सै केड़े पासे तुर पे, वड वडेरिया तू आप कबर पूछते आए ते तो की कीता। भाई मन मैं हूं मिट्टी की पूजा नहीं करनी, मैं हूं मुर्दिया की पूजा नहीं करनी, मैनु जागदी जोत गुरु भेजे, मैं उसका सिख हाँ, मैं उसके दर का मंसा हूं। मंज तेरे गुरु की सिवताए तो भाई मंज प्यार चाह के कहता है कि

0: सतगुरु मेरा तन निधान, सतगुरु मेरा कर दीवान, सतगुरु के हाँ सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया।
1: पूरे गुरु ने मेनू भक्ति का मार्ग दसा,
0: भक्ति के मार्ग विच उस मालिक की प्राप्ति, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। तो कैरी सास पिंड वाले ने बड़ी मुखालफत की, शरीकां ने एदी पौं खो ली, एदा घर जिहड़ा सी ओ भी संभाल लिया, ते इहनू तक्के मार के खड़ पर पक्की मन वाला भाई मन डोलिया, पूरे गुरु की बख्शिश हुई है मन अडोल भाई, मन होर किसी नगर में चला गया। की करता है कहा खोद के बाजार बेचता है, ते ओदे नाल अपना गुजारा, पिंड दा चौधरी, पिंड दा सरदार, पिंड दा जथेदार, अज सिखी नाल प्यार करदा होया, अज इस कसौटी

शरणा से ठहरे किस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तू सितानो जो मेरे भगवान दे दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानो जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू के रहे। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दिया कुब्बा निकलिया ते प्यार नाल इसने पढ़िया नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

आसा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है, खुश नहीं होए। आसा वाले जीवन में आस है ना, इंतजार है ना, एदे च बड़ा सुख है, एदे च कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालक दी याद विच, यादां भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है। मालक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल पर गया। इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे, फिर आपे मालक मेहर करे, प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण। आखो श्री वाहिगुरु।